हरी मीत च फर्क न कोई, हरख सोग दोए सम कर जाने। तेरे तोतले बोल प्यारे, हर इक नू पे देन सहारे।

हे जगदीश मीर वाला इंसान जी हादा नारा मारदा हादा नारा मारदा नवाब शेर खान जी हादा नारा मारदा हाथ जोड़ खड़ा अर्ज गुजारदा नैनी अथर उते मनो ताहा मारदा मजबूर है सिपाही सरकार दा कहंदा एहो जही सजा दसे ना कुरान जी हादा नारा मारदा हादा नारा मारदा नवाब शेर खान जी हादा नारा मारदा सुबा सरहंद दे आगे खड़ गया सुचे मुसलमान नू गुस्सा चढ़ गया सच कहन उत सूरमा सी अड़ गया कहंदा शर सर झूठा थोड़ा फुरमान जी हादा नारा मारदा हादा

0: न करी न मन जूर है फिट लान ता दियोगा तुसा नुजहान जी। हादा नारा मारदा हादा नारा मारदा नवाब शेर खान जी। हादा नारा मारदा थोड़ा वैर है गोविंद सिंह नाल जी। ओदे नाल लड़ो बाण के मिशाल जी। मारो ओनु पावे करके हलाल जी। एना निर्दोषियां दी का तो लेंदे जान जी। हादा नारा मारदा हादा नारा मारदा नवाब शेर खान जी। हादा नारा मारदा कहंदा थोड़ी नौकरी नु मारी लत है मेरे विच इस्लामिक सत है। बलवीर कौर लिख दिता सच है रामगढ़ सीविया भी है कदरदान जी। हादा नारा मारदा हादा नारा मारदा नवाब शेर खान जी। हादा नारा मारदा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: बलवीर कौर सीविया जी तो बाद हुण मैं पटियाला वासी साडी शायरा गायिका निर्मला गर्ग जी नु सदा देंगा। ओ अपनी रचना जिहड़ी लेके हाजिर हो रहे ने ओ कह रहे ने बड़ा ही औखा हुंदा है देश तो कौम तो सरबंस वारना बहुत औखा हुंदा है ते इतिहास सिरजना उस नूं भी वड्डा काम हुंदा है। ते निर्मला गर्ग जी तुहाडा दुआबा रेडियो दे प्रोग्राम गौंदी छाम दे विच निघा स्वागत है।
2: मखमल

कली बैठी हम मैं लेके आसार एक बारी मिले सजना जिंद अपनी मैं दीती है गवा एक बारी मिले सजना झूठ अंग साक सब झूठा संसारे झूठा संसारे रब नू विसार के झूठे नल कीता प्यार वे झूठे नल कीता प्यार वे रहियां खोटियां ते सच्चियां सुना एक बारी मिल सजना जिंद अपनी मैं दीती है गवा एक बारी मिल सजना काल दा निशाना मेरे सिरे उत्ते वजना सिरे उत्ते वजना कड़े है जड़ा उन्हें एक दिन पजना एक दिन पजना एक बार

0: प्रस्तुत है मेरी कविता माँ की वेदना। तो मेरी कविता आपके सामने, कविता का शीर्षक माँ की वेदना। दर्द में छटपटाहट और आक्रोश से भरा ये मन, आखिर नारी होना जो कभी मेरा अभिमान रहा था, सामाजिक विषमताओं को सह जाने की क्या मजबूरी है जिसको सहन करता है, जिसके चलते कामी लोभी लंपट समाज में गाल बजाते फिरते हैं। आखिर कब तक चलेगा ये सब। छान मारे पुरातन ग्रंथ, खूब ढूंढे सब प्रश्नों के उत्तर, पर पाया क्या। तब तो मैत्रेयी गार्गी अनेकों नारियों को थी सम्मानित व बराबरी का दर्जा हासिल। समय की धूल पड़ते पड़ते कहां गई वह बराबरी, कहां गया वह सम्मान, कहां गई वह इज्जत, गरिमा मान सम्मान। कब पूज्या से भोग्या बन गई पता ही नहीं चला, और अब फैशन की गुड़िया बनाकर रख दिया, ऐसा चरित्र बनाकर परोसा बाजार की आधुनिकता में इन विज्ञापनों फिल्मी पत्रिकाओं ने। कितना दिखाऊ और बदन उघाड़ू हो सके उतना बना दिया जाए, छी घिन आती है ऐसी कुत्सित सोच से भी। संस्कृति मान मर्यादा तो कब के पीछे छूट गए इस आधुनिकता के बाजार में। सोच से परे हो गया कि उत्थान है या पतन, समानता का जामा पहनाकर शोषण, दोहरा चरित्र है समाज का। बेटियों को जलील होते उनकी अस्मिता पर घात होते देख मन नहीं तड़प जाता तुम्हारा। माँ हूं सोचती हूँ कहाँ छुपा लूं इन नन्ही बेटियों को, कि इन दरिंदों कामी लोभी लंपटों की बुरी नजर ना पड़े। मन भर आया, खूब सोचा और देखो शाम तुम याद आए। तुम ही करो कुछ कान्हा सब कुछ वैसा दिखे जैसा पुरातन काल में था, और देखो सुझाया रास्ता उसी परम पिता ने और कहा, तेरे सामने छोड़े सभी विकल्प मेरी बच्ची, मैं चुप। पहेलियां मत बुझाएं सर्वशक्तिमान, मैं परेशान हूं। वो बोले, क्या नहीं दिया मैंने तुम सबको, तुम सब नारियों को, मेधा दी, शक्ति दी, भक्ति दी, बल दिया, विद्या दी, तुम बनो ऐसी कि बुद्धि से पछाड़ दो सबको। तुम बनो ऐसी पहलवान कि देकर धोबी पछाड़, कर दो चारों खाने चित पशुत्व के गुणों वाले नराधमों को। बुद्धि पर पड़े पर्दे छटने लगे। हाँ, शक्ति है हम में, रण हो तो रणचंडी बनकर, गृह हो तो गृह स्वामिनी बनकर। अरे देखो स्वामिनी हूं मैं, स्वामिनी है हम। अपने कर्म के मार्ग को थोड़ा और प्रशस्त करती हूं, अपना सोया ज्ञान शक्ति पहचान कर पूरी शक्ति से जुट जाती हूं प्राप्य को समेटने में। हां मैं ध्वस्त आत्मविश्वास को पुनः जगाकर समाज को उनकी ललनाओं को नाइंसाफियों का डटकर सामना करना, कुसंस्कारों से लड़ना, पूरी शक्ति से जूझना और बुराई पर ना झुकना, कलम पकड़ने के साथ साथ मजबूती से कलाई को कठोर बनाना सब सिखाऊंगी। निर्बलता छोड़ो मेरी बच्चियों, निर्बलता छोड़ो, नारी हूं मां हूं ना, दो नहीं चार चार हाथों से आत्मसम्मान व अस्मिता को संभालना सिखाऊंगी। पर फिर भी दर्द से तड़पती हूं, फरेबी नरपिशाचों दुशासनों के अन्याय और घृणित कुकृत्यों पर मैं रुकूंगी नहीं। सब सिखाऊंगी मैं कि दुर्गा बनकर कैसे अपनी रक्षा की जाती है, अन्नपूर्णा बनकर कैसे भंडारी बना जाता है, कल्पना चावला बनकर कैसे पंख फैलाया जाता है और असीमित अंतरिक्ष को नापा जाता है। सब सब सब कुछ सिखाऊंगी मैं अपनी बच्चियों को, सब कुछ सिखाऊंगी मैं अपनी बच्चियों को।
1: ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਲਦਾਸ ਜੀ। ਕਮਲਦਾਸ ਜੀ ਬੜੀ ਧੀਮੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰੋਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਮਲਦਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ।
2: ਲਿਖੇ ਹੈ ਮਨ ਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਸੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਗਮੇ, ਲਿਖੇ ਹੈ ਮਨ ਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਸੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਗਮੇ।

उसे सुनता ही रहता हूँ। लिखे हैं मन ने बड़े यतन से तेरी महिमा में कुछ नगमे, सुने तुमने भी इस मन से जो तुमने ही लिखाए हैं। लिखे हैं मन ने पहाड़ों से निकल कर जल, नदी कहती मेरे संग चल, चले हैं सब चले जाते हैं सदियों से ही सागर।

बड़े यतन से तेरी महिमा में कुछ नगमे सुने तुमने भी इस मन से जो तुमने ही लिखाए हैं लिखे जो मन ने। ये हरियाली भरी वादी ये फूलों से लदी।

लुक लुक के सौदे करना है, लुक लुक के सौदे करना है, बिन मेहनत बोझे पर्दा है, लुक लुक के सौदे।

जेड़ा कपड़े करे करोड़ा बिच बस ओनू लीडर मन देने। पेन बैंक च दो रुपया दा जेनू तागे दे नल बन देने। जिथे रब कर संगता जुतियां नू, जिथे रब कर संगता जुतियां।

मैनू दे के थोड़ा जहर जावी, नी मैं बुरा बुरियाइयां नू तू हमेशा याद रखी।

मैं सदा तेरे नादार उड़ाने हानी निकल गया दार उड़ा मंजिल दे वाले चले सी नी मंजिल दा हुन राए थोड़ा मैं सदा तेरे राधा डोड़ा रेहानी निकल गया राधा रोड़ा मंजिल दे वाले चले सी नी मंजिल दा हुन राए थोड़ा मेरे कुप हो नेरे नू

मैनू याद रोया करेंगी तू, हाय कर करके मैनू याद, बदलां दे विच, बदलां दे विच चन्न जदों मुस्कुराएगा, बदलां दे विच चन्नी जदों मुस्कुराएगा,